कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड प्रताप। जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाहे, परम पद लहिया। बलिहारी गुर अपने

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

सुपन एक प्रतख एक एक समय लीणो तीस एक अरपंच सिद्ध पैंतीस न खीणो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जाल पड़े तू एक लोड़ है एक मन्यो। अज जदो गागर भर के पले उधर तूफान है बिजली चमकदी है ते उधर बाबे ने भी निश्चा किया मैं गुरु दे इशनान तो पहला पानी पहुंचा देने किन्ने तुरदे पहुंचे खडूर सानू सब नू पता है खड्डी विच डिगे ने ते जुलाए ने इन्नी आवाज दे के पुछा कौन है इस वेले ते अंदरों जुलाई ने बोल के क्या कह लगा कौन होना है ओही अमरू नथाना जेड़ा टुकड़िया की खातर कुड़मां दे दर ते बैठा होया जेड़ा रोटी की खातर ते दिन रात गागर चुकी फिरदा है जिन्हों चैन नहीं जदों शब्द वरत्या निथावा ते बाबे अमरदास ने कहा नहीं चलिए तू मैनू जो मर्जी कहे पर निथावा ना कहीं क्योंकि जेड़ा गुरु नानक का हो गया वो कभी निथावा नहीं हुंदा सी मैं कभी निथावा पर जिदन का गुरु अंगद साहब के दर से आ गए उदन भी मेरे निथावे की थां गुरु नानक बन गए मैं निथावा नहीं मेरी थां गुरु नानक गागर डिगी पर पानी नहीं डुलन दिता गुरु अंगद साहब का किवाड़ खुलिया सतगुरु ने दरवाजा खोलिया ते पुछया अमरदास अज इनी देर मिल क्यों क्यों देरी होगी बोले कुछ नहीं सिर्फ अखां विचों नीर सी ते मन कह रहा सी मना देख अज ता शरीर भी जवाब देई जांदा है हजूर ने संजोर के पुछया अमरदास देरी क्यों ते चरण पकड़ के क्या दाता शरीर वडेरा अज ता पानी दी गागर लेंदिया डिग पिया जदों शब्द वरत्या डिग पियावां ते सतगुरु ने छाती न ला के क्या अमरदास मैं इस दिन की इंतजार भी सा कदों तू डिगे मैं तेनू डिगे हुए नू गुरु नानक दा तक दे दिया डिगना ही तो मुश्किल बंदा डिगन लई तैयार नहीं रमन से शब्द अंदर कह लगे देख अमरदास तू कहना मैं डिगा वे जदों फल पक जांदा है पक्कण तो बाद जमीन ते डिगदा है ते फल उन्हां रुखां दे पकदे ने जिन्हां ने सर्दी नू गर्मी नू झक्खड़ नू कक्कर नू पिंडे ते हंडाया तू बारह साल सेवा की डिगा किथे वे कह लगा दाता खड्डी विच ते शब्द वरते एक विद्वान सज्जन ने हजूर कह लगे खड्डी माड़ी नहीं तेनू खड्डी विच डिगे नू मैं गद्दी दियावा खड्डी तो गद्दी बन गई तू गागर चुकी अज गागर ने तेनू दुनिया विच उजागर कर दे गागर ने उजागर कर दिता खड्डी ने गद्दी दे दिती ते अज दे दिन प्यारे जिहड़ा कल लंघिया मेरे गुरु अमरदास नू चिट्टे बस्त्र पहनाए दुध वर्गा चिट्टा दाड़ा ते जदों चिट्टे बस्त्र पहना दिते गुरु अंगद साहब ने प्यार नाल सिंघासन ते बिठाया ते संगत विच भरी विच कहा मेरे पुत्रो मेरे सिखो मेरे भरावो अज तो बाद गुरु नानक दे तख्त दा मालक बुजुर्ग बाबा अमरदास है अज तो बाद अंगद दे दर्शन तुसी गुरु अमरदास विचों करने पहली नमस्कार गुरु अंगद साहब ने कीती जदों गुरगद्दी ते विराजमान हो गए मैं सिर्फ पांच चार मिनट कह के समाप्ति करना जे गुरु अमरदास दे पूरे दर्शन करने दे ना ते भट्टां दे सवैयां विच बाई सवैये गुरु अमरदास जी दी उस्तत विच ने एक शब्द भट्ट ने बड़ा सोहना कहा कह लगे ए मित्रो जे तुसी सफल होना ते गुरु अमरदास दे दर्शन करो कह लगे अपनी अखां नू अपनी जबान नू ए रसना जे तू सफल होना ते गुरु अमरदास क्या कर धन गुरु अमरदास जे कन्नों तुसी सफल होना गुरु अमरदास दी बाणी सुनो जे चरणों तुसी पवित्र होना ते गुरु अमरदास दे राह ते तुरो ते कह लगे जे दो हथां नू पवित्र करने ते गुरु अमरदास दे चरण घुट के पकड़ लै जे हिरदे नू पवित्र करने ते हिरदे विच गुरु अमरदास दी बाणी नू टका भट्ट ने शब्द क्या चरण तो पर सकिया तो चरण गुर अमर पवल रहे हथ तो पर सकिया तो हथ लगे गुर अमर पै जी तो पर सकिया तो जी गुर अमर भरीजै नैण तो पर सकिया तो नैण गुर अमर पखीजै सरवण तो पर सकिया तो सरवण गुर अमर सुनीजै ये गुरु ग्रंथ साहब के बचन ने कह लगे हियो तो पर सकिया जे हिरदे नू पवित्र करनी तो हिरदे विच गुरु अमरदास नू टिकाले ते पुछया इहदे परस नाल होवेगा।

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण कीता है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइयै। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के सिखा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया है, शराब का पेश किया है। ते बाबा जी पुछदे ने इह की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक इहदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो इह तैयार किवें कीता जी, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया है, ते इहदे चो गिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता है, उहदे विच नाली लाई है, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया है, ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया है, ते थल्लो अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकले है इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, वह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान
परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाईया एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ चुवाईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवै सहज रंग रस रहा एमस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भई ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मात्र नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी ते सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवा विच आए अपना पराया हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कड लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उन्हां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु

अकाल मूरत अजूनी सैतम गुर प्रसाद जप आदि सच योगाद सच है सच नानक खुशी पी सच मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आ गया अरदास मैं पूर थाऊ नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझगी पास ना हो जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया परणवत नानक तिन

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज।

0: भी पढ़ लेना तुसी, तोज़ के जहांगीरी विच जो स्वयं जहांगीर ने लिखे। खून नहीं डुलना चाहिए। दुष्ट तो दुष्ट बंदे भी मनदे आए ने कि जो सतवादी है, इंसान पसंद बंदा है, बेकसूर बंदा है, अगर उसका खून डुलगा तो डुले हुए खून तो कई शहीद पैदा होंगे। होर ये पुराने लोग मने मनते आते सन। तो क्षमा करने पंजाब की धरती विच किधरे मनी सिंह का खून डुलिया है, किधरे बाबे दीप सिंह का खून डुलिया है, किधरे महा सिंह का खून डुलिया है, किधरे
1: दार्शनिक लोग ऐसा कहते ने वो वस्तु वो हस्ती मनुख नु सुख दे सकती है जो मनुख दे काबू दे च होवे। जो काबू विच नहीं बेकाबू है वो सुख की थां ते दुख देंदी। इस वास्ते कारामत और सुख ओही चीज देंदी है जो बंदे दे काबू विच है। आद काल तो जी गल बंदे की समझ में आई, इस वास्ते उसने जिस जिस तो कम लेना सी ते जिस जिस तो सुख लेना सी उन्हों काबू विच रखन दे यतन कीते। मनुख ने जद अजे जंगलां च रहिंदा सी ते सारा कम भी जंगली जानवरां तो लेंदा सी, गल समझ विच आ गई सी जिहड़ा जानवर मेरे काबू विच नहीं मैं उस तो कम नहीं ले सकदा, उस तो सुख नहीं ले सकदा। मनुख ने घोड़ा पकड़िया ते घोड़े दे मूंह विच लगाम पा दित्ती। सजे खिचदा है घोड़ा, सजे मुड़दा है, खब्बे खिचदा है, वह खब्बे जांदा है, जिथे दोवें लगामां खिच लवे उत्थे रुक जांदा है। जिस घोड़े दे मूंह विच लगाम नहीं उस घोड़े का असवार मंजले मकसूद ते नहीं पहुंच सकेगा, टिकाने ते नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? एक ते जिथे उसने मोड़ना है मुड़ना नहीं, जिथे उसने रोकना है रुकना नहीं। तो सुख की थां ते उस तो दुख ही मिलेगा। मनुख ने ऊठ नूं पकड़िया ते उहदे नक विच नकेल पा दित्ती। मैज इस वास्ते कि ये सिर्फ चले ही ना, जिथे इसनूं रोकना चाहिए रुक भी जाए। हाथी के सिर के उत्ते अंकुश का रखना इसे गल का सबूत है कि इस तो सुख लिया जा सके ते कम ले जा सकन। जिथे असी इसनूं रोकीए अंकुश मार के रुक जाए। होर अगां चलीए, बैलां दे नक विच नथ पा दित्ती। जे नथ ही नहीं कि बैल हल दे चल सकते काम कर सकेंगे। जो जानवर रुकदा नहीं ते मुड़दा नहीं वो सुख की थां ते दुख का बायस बनता, सुख नहीं देता। मशीनरी का युग आया, जानवर सहजे सहजे रुखसत होने लग पे मनुख की दुनिया तो। ते मनुख ने साइकल बनाई, ते साइकल दे विच दो ब्रेकां ला दित्तियां। अगले पहिए च भी ब्रेक है, पिछले च भी ब्रेक है, दो ब्रेकां ने। ते बिना ब्रेक दी साइकल होवे ते कोई तेजी नाल उस नूं चलावे ते अगों आ जाए ढलान रोकियां रुके ना, तो सवार मंजिले मकसूद ते पहुंचण दी थां ते मरगट घाट पहुंचेगा। साइकल का रुकना बड़ा लाजमी है, उसका काबू में चलाना बड़ा लाजमी है। फिर मोटर कारां ते बसां रेलां गड्डियां बनिया। बस का चलना ही कोई बहुत लाजमी नहीं, उसके ब्रेकां का होना ते उसका रुक जाना भी बड़ा लाजमी है। मुसाफरां नूं दस दिता जाए बे इस बस दियां ते ब्रेकां फेल ने, काम नहीं करदी, ते जिथे इसनूं रोकना चाहिए

शरीर लू तो लेने नाल मनते नहीं धोता जाता विचार ते शुद्ध नहीं होते तन नू रोज धोंदा रहो सुभा नहीं बदलना ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए तुम्मे दी वेल कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है कहिंदे ने

पव निरंकार पव खंडन साव सुख नाव निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सारा ही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थान दिया सुखदाता निखुट ना कब ही जाए आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

तेरी उपमा तोहे बण आवे। धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी ब्रिद मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नू ए उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसे भी हिस्से विच मनुख नू निराश नहीं होना चाहिदा, चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया बिरध भी हो गया पर मनुख दे अंदर अगर उत्साह है, उमंग है, आशा है तो बहुत वड्डे वड्डे कम उस अवस्था विच भी हो सकदे ने जदकि अक्सर बुढ़े पिछलोकी निराशा दे खड़ विच जा गिरदे ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज दा जन्म पिंड बासर के जिला अमृतसर माता लक्ष्मी जी दी कुखों पिता तेजभान दे घर विच होया। आप जी दा जन्म विसाख सुदी 14 1526 विच होया। आप जी दी संतान मोहरी जी, मोहन जी ते दो पुत्रियां दानी जी, भानी जी, ए आप जी दा ग्रस्ती जीवन सी। बच्चियां देच, परिवार देच, घर ग्रस्ती देच आप जीवन इस ढंग दा बरतीत कर रहे सन जैसे के पानी देच रहिंदा होया कमल। लेकिन फिर भी एक धू अंदर बनी रहिंदी सी कि परम आनंद ओ जो समाधि है ओ नसीब होवे। कहिंदे ने आपने इसे ही इच्छा नु मुख रख के थां थां ते तीर्थां दा विरटन कीता और अक्सर गाहे बगाहे हरिद्वार भी जांदे सन। एक दिन गंगा देच इशनान करके ठंड दे दिन सन रेत देच बैठे चरना नु पसार के पैर पसार के एक पांदा जो इल्मे निजूम देच माहिर सी ज्योतिषी सी लंगया। उदी निगाह पसरे हुए चरना ते पै गई और उसने मत्था टेकया। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने रोकया, आख्या ब्राह्मण देवता मैं ते खत्री हां, तू ब्राह्मण है, कुल करके जात करके तो उच्चा है, मैनू क्यों मत्था टेकया? तो ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज थोड़े चरना दिच पदम है, ये पदम ते किसे ब्रह्म ज्ञानी दे चरना दे छोंदा है, ये पदम ते किसे पहुंची हुई रूह दे चरना छोंदा है, थोड़े कदमां दे च पदम। तां गुरु अमरदास जी महाराज बड़ी रूहानी मुस्कुराहट च कहन लगे, ब्राह्मण देवता मैं ते एक यात्री हां, बिल्कुल यात्री। वो ब्राह्मण कहन लगा, महाराज ये बीज अजे अंकुरित नहीं होएगा, होया ए होण वाला है, और जदों ए बीज अंकुरित होवे है मैनू भुलना नहीं, मैं थोड़े चरना चावांगा, मैं थोड़े दर्शन करन लई फिर आवांगा। रब दी नेत गुरु अंगद देव जी महाराज दी पुत्री बीबी अमरो आप दे भतीजे नू व्याई गई। इस तरीके नाल गुरु अंगद देव जी महाराज दी बच्ची आप जी दी नूं बनी। एक दिन बीबी अमरो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी चाटी नूं रिड़कदे होया अलाप रही सी, पढ़ रही सी बड़े मधुर ढंग देच, बड़े मधुर वेग देच। बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछ लिया, बेटा ये किस दे बचन पढ़ रही है, ये किस दी बाणी पढ़ रही है, बहुत खिच पाई है इसने मैनू। तां नूह राणी कहन लगी, बाबा ये बाणी धन गुरु अंगद देव जी महाराज दी है, दूसरे गुरु नानक और वो मेरे पिता ने रिश्ते देच
मेरे पिता ने हैं थड़े पिता ने नाम जरूर सुनिया सी और व्याह दे समेच कुड़माचारियां दा जैसे मिलाप होंदा है ए भी जरूर होया लेकिन खिच ते आखिर शब्द तो पेंदी है अगर कालियां घटावां सूरज दे अगों भी आ जान तो एक दफा पृथ्वी ते अंधकार हो जांदा है ए गल वखरा है कि सूरज दे च अनेरा नहीं सूरज दे च अंधकार नहीं पर सूरज दा चानना सूरज दा प्रकाश सही मायने च धरती ते पहुंच सके कालियां घटावां रोक ते खड़ी कर देंदियां ने तो कुड़माचारी रिश्तेदारी शरीकाचारी और समाजिक रिश्ते संसार दियां परंपरावां इतनियां निक्कियां वड्डियां बदलियां सन जिन्हां दे चों गुरु अमरदास जी महाराज नूं झांकण दा मौका ही ना मिलिया कि गुरु अंगद देव जी महाराज वकत दे ओ रूहानी सूरज ने जो चारों पासे चानना वंड रहे ने पर अज जद उस सूरज दी एक किरण कन्ना दे च पई शब्द ते आखिर कन्ना च ही पएगा और सुनिया अपनी नूह राणी तो तां दर्शना लई चल पै श्रीक दे ते कुड़माचारी है और फिर आप पुत्र वाले ने बेटे वाले ने जद के गुरु अंगद देव जी महाराज पुत्री वाले सन आखिर भारतीय परंपरा दे मुताबक लड़की वाले अक्सर अपने आप नूं निर्माणता दे च रखदे ने गरीबी च रखदे ने और हमेशा लड़के वाले स्वय अभिमान दे नाल आंदे ने माण ताण दे नाल आंदे ने पर अज कुछ रूहानी दुनिया दी झलक ने उल्टी गंगा चला दित्ती अज लड़के वालियां दा सरप्रस्त मुखी बिरद बाबा अमरदास गुरु अंगद देव जी महाराज दे दर्शना लई चले है रिश्ते च कुड़माचारी है खंडूर साहब आके जद दीदार कीते भरी संगत दे च गुरु अंगद देव जी महाराज दे मुखारबिंद तो जद अमृतमई बचन सुने तो जिस ढंग नाल किन्ने ने सिर झुकदा है झुकाया नहीं जांदा स्वभाव की झुक गया कदमा ते डिग पे डंडौत कीती ते हथ जोड़ के बेनती कीती गुरुदेव इस कुड़माचारी दे रिश्ते नूं मैं एक पासे करदा मैं अज तो आप दा सेवक आप दा सिख और वाकई आपने मैनू कबूल कीता है सेवक दे रूप च तां जरूर कोई सेवा भी बख्शो मैं सेवा भी करा हुण इक ते बिरद शरीर गालवन 70 तो उच्ची टपी हुई अवस्था बिरद शरीर पर उत्साह बड़ा है उमंग बड़ी है गुरु अंगद देव जी महाराज ने हां कर दिती ठीक है सेवक दे रूप ते तुसी कबूल सानू अमृत वेले इशनान करा दिता करो रोज दी सेवा हुण ब्यासा अद्धी रात नूं उठदे ने सिर ते गागर रखदे ने और आप जांदे ने पहले स्वयं इशनान करदे ने फिर गागर नूं ब्यासा दे जल नाल भर के सिर ते रखदे ने ए भरी होई गागर जद चुक के बिरद बाबा गुरु अंगद देव जी महाराज दे मार्ग ते चलदा है ते इंज जापदा है जिवें त्रिलोकी दा भार इस बिरद बाबे ने चुकिया होया जिवें समूह संसार दी जिम्मेवारी इस बाबे ने चुकी हुई है बाद दे च वाकई आप दे किरदार राही आप दे प्रचार राही ये सब कुछ प्रगट भी होया इस सेवा आपने कोई एक दिन नहीं की थी एक महीना नहीं की थी एक साल नहीं बल्कि 12 साल की थी
रोज अद्धी रात नूं उठना है, ब्यासा ते पहुंचना है, अमृत वेले होंदे होंदे तक जल भर के लेना है, और गालबन तिन कोदा पेंडा है, 6 किलोमीटर दा ए रस्ता है जो आप रोज तय कर देने जाना ते आना। अज किधरे ऐसा होया जद जान लगे अधी रात दा वकत रात हनेरी सी, आप एक चुलाहे दी खड्डी दे गिर गए। आवाज आई, खड़ाक आई, ता जुलाहे ने अपनी घरवाली नू आवाज मारी, देख बार कोई है, खड्डी दे खड़े च कोई गिरे है। ता जुलाही कह लगी, अद्धी रात नू ओही अमरू ने थावा होएगा, उस तो इलावा होर कौन होएगा। अद्धी रात नू ओही उठदा है, उसे दे सिर ते गागर आउंदी है, ओही भटकदा होया गिर गया होएगा, ओही अमरू ने थावा। बथेरिया नू इह सोचण दा मौका मिल गया कि बिरध शरीर है, शायद पुत्र नहीं रखदे, भतीजे नहीं रखदे, ताई ते शरीकां दे घर आके टिके ने, और सिर्फ टिके ही नहीं, ताई ते ब्यासा तो गागर जल्दी भर के लैंदे ने, दिन नूं लकड़ां फाड़दे ने, तप्पड़ छाड़दे ने, लंगर बनाउण दी सेवा करदे ने, ए नौकरी करदे ने, ए गुलामी करदे ने, इन्हां दा कोई थां नहीं। पर चल तो गई गल खंडूर देच, अमरू ने थावा, अमरू ने थावा, अमरू ने थावा। ए बचन धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे कदमच पहुंचे और आप दे कन्ना ने सुन के हैरानगी जताई, है अमरू ने थावा। जैसे अमरदास जी आए, कोल बिठाया, सिर ते हाथ रख के कह लगे, गुरु अम...